0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দী আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মই মনোজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
4: Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from Norwegian and Indian business and research communities. Earlier, in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Mr. Modi is scheduled to hold talks with business leaders to further promote trade and investment between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no first use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted its report to Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements under the Judges Inquiry Act 1968. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. The committee was constituted by Lok Sabha Speaker on 12th August last year.

handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा।

0: अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल

0: कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ক্ষন্তেক পাছতে অর্থাৎ 12 বজাত হিন্দীত আর 12:05 ইংরাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মৈ কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
4: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
2: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of the summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
5: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even

फौजी भाइयों, आइए सबसे पहले आपको बता दें उन कार्यक्रमों के बारे में जिन्हें आप आज के प्रसारण में सुनेंगे। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत, 1:40 का समय है कार्यक्रम शीर्षक संगीत का।

दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 का समय है कार्यक्रम गुंजन का। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। और फौजी भाइयों, इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर आज आपके साथ रहूंगी मैं गुना प्रभा बोरा।

फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत है हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अरिजीत सिंह को, फिल्म का नाम है अमर प्रेम की प्रेम कहानी।

0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे संजू फिल्म का एक गीत। पुनीत शर्मा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रोहन रोहन्ना ने। आइए सुनिए गीत सोनू निगम, सुनिधि चौहान और रोहन से।
1: प्रिय

0: છે?
1: બઢિયા.
2: इसी के साथ फौजी भाइयों, आज का गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ.

खुले में शौच न करें, विज्ञान सम्मत शौचालय का व्यवहार करें, खाने से पहले और शौच के बाद आप अपने दोनों हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम सुनवाने से पहले आइए आपको कल के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल बुधवार है, रोजाना की तरह कल का हमारा सैनिक भाइयों का प्रसारण आरंभ होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। दैनिक कार्यक्रम आज का गीत का समय है 12:30 और 12:38 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम फिल्मी नगमे।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 का समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम तरंग का, 1:40 से आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम प्रीत लड़ी का। इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर।

Tatu, ô Tatu,

கிட்டு கிட்டாம் கிட்டு கிட்டை.

फौजी भाइयों गीत अपना धुन पर आई कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग्ज्योतिषपुर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में त्रिशूल फिल्म का ये गीत।

फौजी भाइयों, इस वक्त आपके साथ हूं मैं गुना प्रभा बोरा। आज मंगलवार है और ये समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत का। आपको बता दें, हमारी आज की फिल्म है LOC कारगिल। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म का पहला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

मशहूर निर्देशक, लेखक और निर्माता जेपी दत्ता ने अपने करियर में महज 10 फिल्में बनाई और इसमें से ज्यादातर फिल्में देश को समर्पित रहीं। उनके द्वारा बनाई गई मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर तो इतिहास में दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी फिल्मों में से एक एलओसी कारगिल बनाई। ये कुल 4 घंटे 15 मिनट की कहानी है जिसमें कारगिल युद्ध की कहानी को दर्शाया गया है। फिल्म एलओसी कारगिल के डायरेक्टर जेपी दत्ता वो निर्देशक भी है जिन्होंने इंडस्ट्री में युद्ध पर फिल्में बनाने का दौर शुरू किया। जेपी दत्ता ने 40 लीड एक्टर्स के साथ फिल्म एलओसी कारगिल को बनाया था। उस समय की सबसे बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी इसने दर्ज किया है। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत हरिहरन, उदित नारायण और सोनू निगम की आवाजों में।

फौजी भाइयों, एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं LOC कारगिल फिल्म के गीतों को। इस फिल्म के गीतों को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत अनु मलिक का है। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत रूप कुमार राठौर की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फची भाई और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मुझसे शादी करोगे फिल्म का शीर्षक गीत, आवाजें सोनू निगम, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम का आखिरी शीर्षक गीत सुनिए, हम साथ साथ हैं फिल्म से। आवाजें हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति की आवाजों में।

0: इन्हीं गीतों के साथ फौजी भाइयों शीर्षक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस समय दिन के 2 बजने को है। बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. Prime Minister Narendra Modi will attend the 3rd India-Nordic Summit in Oslo this afternoon. The summit is aimed at strengthening the country's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. According to the Ministry of External Affairs, Prime Minister Modi will be joined by Prime Minister of Norway Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen, Prime Minister of Finland Petteri Orpo, Prime Minister of Iceland Ms. Kristrun Frostadottir and Prime Minister of Sweden Ulf Kristersson for the summit. The Ministry said this summit will impart a more strategic dimension to India's relationship with the Nordic countries, especially in technology and innovation. Green transition and renewable energy, sustainability, blue economy, defence, space and the Arctic. On the sidelines of the summit, Prime Minister Narendra Modi today held a bilateral meeting with Prime Minister of Iceland, Kristrun Mál Frostadottir. We now go over live to our correspondent, Sangeeta Godbole, who is in Oslo to cover the Prime Minister's visit. Sangeeta, Nordic countries are global leaders in green technologies. What concrete collaborations are expected with India in the renewable energy and green hydrogen sector?
2: Well, sir, the Nordic countries generate over 90% of their electricity from fossil-free sources. India has its own ambitious green transition goals, so it would help in harnessing renewable energy sources like wind, hydropower, biomass, geothermal with the help of their expertise. The most concrete step taken towards the collaboration was yesterday when the India-Norway relations were upgraded to green strategic partnership. It will help Norwegian companies to innovate and invest in sectors like green hydrogen, blue economy and circular economy. India will also be participating in Nor Shipping 2027 with an India Pavilion. This will ensure knowledge sharing in shipbuilding and also green shipping, also in port infrastructure. At the business summit yesterday, Prime Minister Modi shared a vision of increasing India's share in Norwegian shipbuilding, which is currently at 10%, to 25%. Before that, he also invited Swedish companies to enhance their presence at the National Green Hydrogen Mission. Today's third India-Nordic summit will definitely give an impetus to this collaboration on the green energy front.
1: Right, thank you, Sangeeta, for bringing us all those details. Prime Minister Modi reached Norway yesterday after completing his visits to the UAE, the Netherlands and Sweden. Last evening he attended the India-Norway Business and Research Summit with Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under the consequent creation of 1 million jobs in India. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. Our correspondent covering his visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour. And the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
1: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article published in National Daily today, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. Both the leaders mentioned that a rules-based international order anchored in international law and sovereign equality has helped create decades of stability and development. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas, including airports and residential colonies. The bench warned that officials failing to implement the directions could face contempt and disciplinary action. The Delhi High Court today sought responses from AAP leaders, including Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh and Saurabh Bharadwaj in a criminal contempt case over alleged social media posts against Justice Varnakant Sharma. A bench of Justices Naveen Chawla and Ravinder Dudeja issued notices and granted 4 weeks to file replies. The matter will be heard on the 4th of August this year. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the four states, along with senior police and administrative officials, are also attending the meeting. Army Chief General Upendra Dwivedi has said Operation Sindoor delivered military precision, information control, diplomatic signalling and economic resolve as one coherent national act. The Army Chief said this while addressing a seminar on security to prosperity, smart power for sustained national growth at the Centre for Land Warfare Studies in the National Capital.
4: Operation Sindoor delivered military precision, information control, diplomatic signaling and economic resolve as one coherent national act. It struck deep, dismantled terror infrastructure, punctured a long-standing strategic assumption and then stopped deliberately and purposefully. The deliberate halt after 88 hours was smart power in its most complete expression, knowing exactly which instrument to apply, at what intensity and precisely when to convert a military movement into a strategic.
1: Indian Railways has approved the 54-kilometre Kiul Jhajha third line project at a cost of 962 crore rupees. The Ministry of Railways has said the project forms an important part of the high traffic density network of Indian Railways and is expected to strengthen both passenger and freight movement across eastern and northern India. Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav has said the project will significantly enhance capacity on the heavily utilised Howrah-Delhi corridor. Former Uttarakhand Chief Minister and senior BJP leader Bhuvan Chandra Khandoori passed away at a private hospital in Dehradun today after prolonged illness. He was 91. A former Army Major General, Khanduri served twice as Uttarakhand Chief Minister and was also Union Road Transport and Highways Minister in the government of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Chief Minister Pushkar Singh Dhami described his death as an irreparable loss to public life. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the demise of former Chief Minister of Uttarakhand. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said the cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values and close cooperation in defence, security and regional stability.
5: This visit is particularly significant as it serves as a major milestone that showcases the depth of our bilateral relations. We are delighted that during your recent visit to India, this partnership was upgraded to a strategic partnership. I am confident that our discussions will further strengthen our defense and security cooperation and pave the way for new avenues of collaboration in the years to come.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued a yellow warning for heat wave conditions in the national capital for the next 3 days. According to the IMD, isolated places in the city are likely to reel under intense heat during the day. A report from our correspondent.
6: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 43 to 45 degrees Celsius today, while the minimum temperature is likely to hover near 28 degrees Celsius. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital were in the range of 43 to 45 degrees Celsius, while the minimum temperature were in the range of around 27 degrees Celsius. As of yesterday, 44.6 degrees Celsius was recorded in the Ridge Area Station of IMD. Safdarjung Station recorded 43.4 degrees Celsius, Lodhi Road Station 43.8 degrees Celsius and 43.5 degrees Celsius was recorded at Palam Station. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. Banda continued as the hottest place in the country on the second consecutive day with a temperature of more than 47 degrees Celsius. Chief Minister Yogi Adityanath directed district magistrates, the health department, power department and relief agencies to remain on alert mode. More from our correspondent.
7: Apart from Banda, which recorded a staggering 47.6 degrees yesterday, several districts across the state are experiencing severe heat wave conditions with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
9: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
8: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
10: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
8: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
11: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
8: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
4: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
12: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
4: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
8: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
13: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
8: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
7: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ

0: 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। हमारे इस प्रसारण में फौजी भाइयों आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए अब पेश है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम का आगाज करेंगे काश आप हमारे होते फिल्म के इस गीत से, जिसे गा रहे हैं सोनू निगम।

फौजी भाइयों, जाते जाते कार्यक्रम के आखिर में सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक को यादें फिल्म के इस गीत में।

इन्हीं गीतों के साथ फौजी भाइयों गुंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे एफएम रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। सैनिक भाइयों के हमारे आज के प्रसारण का अब यहीं होता है समापन। कल 12:10 पर आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। आज रेडियो डॉक्टर में, क्योंकि आज वर्ल्ड आईबीडी डे है और इसलिए ये कार्यक्रम आज का स्पेशल होगा। आईबीडी क्या है, इन सब के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब स्टूडियो में।
3: थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।
2: थैंक यू सर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी, और आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हुई, हमें फोन करने के लिए तैयार रहिए। मैं डॉक्टर की पसंद का एक गीत आपको सुनवा रही हूं।
4: मैंने

0: एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर और आज वर्ल्ड आईबीडी डे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, आज का ये दिन खास है बिकॉज कई वर्षों से इसको ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन। बहुत से लोग तो पहले यही जानना चाहते होंगे कि आईबीडी क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं।
1: जी मैम, ये एक बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है। ऑन 19th ऑफ मे वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड आईबीडी डे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ दिस डिजीज। आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारे आंतों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आ जाता है तो उनको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। बाउल मतलब आंत, डिजीज मतलब उसकी बीमारी।
0: जी,
1: तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर दो तरीके के आंत होती है, एक स्मॉल बाउल होती है, एक लार्ज बाउल होती है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। जब कोई बीमारी उसके इन्फेक्शन कर देती है लॉन्ग टर्म, उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं।
0: ओके, बहुत सारे फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, बिकॉज जैसे ही लोगों ने सुना कि आज का विषय ये है तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और आप यहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे, तो हम किस लिसनर से बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, अनूप कुमार फ्रॉम रांची।
0: जी सर, बताएं।
2: सबसे पहले तो हैप्पी वर्ल्ड आईबीडी डे। और सवाल पूछना था।
0: जी पूछे।
2: अमीबाइसिस डस्ट कॉज्ड बाय वाटर, अमीबाइसिस,
1: हाँ जी,
2: इसका क्योर कैसे?
1: देखिए, अमीबियासिस जो होता है ये एक कीटाणु होता है जिसके वजह से बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर ये फूड एंड वाटर में कोई कॉन्टामिनेशन हो तो उसके वजह से हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका जो है पैरासिटिक के लिए दवाइयां आती हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी,
1: प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि बार बार अमीबियासिस हो जाता है तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। बट ये किसी ऑलरेडी पेशेंट जिसको आईबीडी है, उसको अगर वो गलत खान पीन से होता है, उसको बार बार अमीबियासिस हो सकता है, बार बार फ्लेयर अप हो सकता है। ही इज मोर प्रोन ये बीमारी से, क्योंकि इनकी बड़ी आंत कमजोर होती है, इन्फेक्शन की ग्रस्त होती है, तो बार बार ये इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को अपने खान पीन पे ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन वे में देखना चाहिए और फूड एंड वाटर का जो है खास ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी जगह से लें और उनका केयर करें।
0: यानी कि इन्फेक्शन जो होता है, इससे जो इन्फेक्शन लगने के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है डॉक्टर साहब, इज इट दैट?
1: नो, ये प्रॉब्लम पहले से ही होती है। हो सकता है
0: पहले से, मतलब जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी होता है?
1: नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी हो सकती है। बट ये है कि जब मालूम पड़ता है हमें, तो बेसिकली हमें ये डिस्टिंग्विश करना होता है। एक एंटिटी होती है जिसको एक्यूट कोलाइटिस कहते हैं। एक्यूट कोलाइटिस मतलब एक ऐसी कोलाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज बाउल जो कि 6 महीने से कम ड्यूरेशन की है। अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस लार्ज बाउल की होती है जो कि 6 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन की होती है, उसको हम क्रॉनिक कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं। कभी कभी कोई भी डिजीज जो होती है धीरे धीरे धीरे बॉडी में पलपते रहती है और एक टाइम आता है जब वो सामने आती है। जो ये सामने आती है, ये ऐसा हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन के टाइम में वो सामने आए, जैसे डायबिटीज भी, हाइपरटेंशन भी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये डायग्नोस होती है उसी दिन ये बीमारी बॉडी के अंदर पैदा हो गई। ये पहले से होती है लेकिन किसी कारण से बॉडी भी फाइट करती है डिजीज को दबाने में। बट एक

0: टाइम आता है कि बॉडी नहीं कर पाती और वो अपने फ्लेयर अप करके सामने आ जाती है। ऐसे ही होता है कि कोई किसी ने खाना पीना खाया और उसको इन्फेक्शन हो गया और फिर वो सामने आई, फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया, ज्यादातर इन्फेक्शन जो है एक दो हफ्ते में एंटीबायोटिक्स या कुछ वो करके ठीक हो जाती है। बट अगर वो नहीं ठीक होती, कभी कभी दो से तीन वीक, तीन से चार वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है, तो ये सिम्टम जब दो से तीन हफ्ते तक एक्सटेंड करती है तब हमें शक होता है कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त है, फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन की एग्जामिनेशन। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कि जैसे हमारे गार्डन पाइप्स होते हैं, पानी देने के लिए पाइप होता है, वैसे ही पाइप होती है, उसमें लाइटो कैमरा होता है। तो पेट को साफ करने के बाद डॉक्टर्स या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये पॉटी के रास्ते हम उस पाइप को करते हैं और हमें बड़ी आंत देखने को मिल जाती है। बड़ी आंत से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली 3 mm का बायोप्सी होता है, उसको फिर लेके हम लैबोरेट्री में भेजते हैं। लैबोरेट्री में वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन होता है और तब हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त पेशेंट है। ज्यादातर कभी कभी पेशेंट शॉक हो जाता है कि मैं जो अभी तक पता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम हर चीज का होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन हर चीज का होता है, तो उसमें ये पता चल सकता है। इसीलिए हमारा ये रिकमेंडेशन है किसी को भी अगर सिम्टम्स हो इन टर्म्स ऑफ लूज मोशंस, ब्लीडिंग पीआर, पॉटी के रास्ते में ब्लड आ रहा हो, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हो, मोर देन टू टू थ्री वीक्स ही शुड और शी शुड गो टू हिज विजिट अ डॉक्टर एंड गेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ एग्जामिन फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और IBD।
1: सो यू सजेस्ट कि अगर दो या तीन हफ्ते तक आपको लगातार पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द है या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप यकीनन समझें कि कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर को जरूर देखें। यहां पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इसके बारे में।
1: और आजकल हम ये देख रहे हैं दैट आईबीजी का एज जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ भी जा रहा है।
0: डाउनवर्ड ट्रेंड
1: मीन्स पहले हम यूजली ये सोचते हैं कि जो ये बीमारियां हैं 40 से 60 साल की उम्र में होती हैं, पर आईबीडी वैसे भी बीमारियां एक्टिव एज ग्रुप्स की हैं जो कि 25 टू 45 एज ग्रुप की है। एंड आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि इवन बच्चे और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, विच इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, बिकॉज इस एज ग्रुप में जब ये सिम्टम्स आते हैं क्योंकि लूज मोशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो इन बच्चों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसिस बहुत आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के साथ साथ बच्चों में ग्रोथ फेलियर्स एंड अदर थिंग्स आ जाती हैं, और इनकी जो दवाइयां होती हैं वो काफी स्ट्रांग दवाइयां होती हैं, कभी कभी इम्यूनो सप्रेसेंट चलती हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलती हैं और ये आजीवन चलती है। तो बच्चों में जब दवाइयां देंगे तो ऑब्वियसली कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा होगा तो उसको ऑल नेक्स्ट 40-50 इयर्स तक ये दवाई लेनी है। तो ऐसी चीजें आती हैं और थोड़ा सा डिफरेंट होता है आईबीडी का प्रोफाइल बच्चों में।
0: आपने कहा आजीवन चलती है, तो ये क्या ठीक नहीं होता, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं होता?
1: नहीं मैम, जैसे मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ये डिजीज भी एक क्रॉनिक डिजीज है, इसमें दवाइयां कंट्रोल कर सकती हैं बट क्योर नहीं कर सकती। क्योर मतलब हम समझते हैं हमारी भाषा में, हमारे डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर वो डिजीज चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन टूबोक्लोसिस में भी 6 से 9 महीने तक दवाई देते हैं, उसके बाद टीबी खत्म हो जाती है, उसके बाद और देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जैसे डायबिटीज है, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई से कंट्रोल हो सकती है लेकिन आज तक साइंस, इंग्लिश साइंस में वो क्योर नहीं हो सकती। मेडिसिन हाइपरटेंशन, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई लेंगे तो कंट्रोल होगा, दवाई नहीं लेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे ही आईबीडी में भी दवाइयां चलती रहती हैं। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी की भी एज होती है, आपकी भी एज होती है, तो बीमारी की भी एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आगे आगे आएंगी, तो दवाई की डोज भी बढ़ेगी, डिफरेंट दवाइयां भी यूटिलाइज होंगी और आगे आगे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। इसीलिए आपको डॉक्टर्स की निगरानी में रहना चाहिए। पर अच्छी बात ये इसके साथ ये है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी होती है इसमें दवाई लेंगे तो यू विल बी परफेक्टली ओके, आप एकदम हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे पेशेंट्स क्या है, 2-3 साल बाद जब ठीक हो जाते हैं तो दवाइयां बंद कर देते हैं क्योंकि इतने अच्छे हो गए। बट आमून ऐसा होता है कि वो फिर 6 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद दोबारा उनको सिम्टम्स आ जाते हैं, दे कम बैक टू अस अगेन।
0: तो इसका मतलब कि अगर इतने लंबे समय तक आजीवन की बात कर रहे हैं आप, तो दवाइयां लेने का बाकी इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज मेडिसिन तो अफेक्ट करते हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं, और कोई बीमारी भी हो जाने का डर होता है?
1: ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया, जब हम लंबे देते हैं तो नॉट ओनली दवाइयों के कॉम्प्लिकेशन

0: पेशेंट्स पर दवाइयों का खर्चा भी होता है, ये भी मन में रखना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो दवाइयां होती हैं मेसिलेमिन, ये बहुत अच्छी दवाई है। 99% पेशेंट्स में स्टेबल रहती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सिर्फ इसमें साइड इफेक्ट फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाता है, इसलिए हम हमेशा इस दवाई के साथ फोलिक एसिड देते हैं और ये चलती रहती है। लोग 5, 10, 20, 30 साल तक लेते रहे। आई हैव मेनी पेशेंट्स हु हैव टेकन टिल 15 टू 20 इयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स।
1: डॉक्टर साहब, फोलिक एसिड से भी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
0: फोलिक एसिड तो एक विटामिन है मैम। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अच्छी चीजों का भी एक्सेस अच्छा है।
1: बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में तो जरूर खिलाते हैं।
0: yes, yes.
1: और बहुत सी वेमेन को होता है ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये बात जानती थी कि फॉलिक एसिड से हो जाता है।
0: कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी इज ए डिफरेंट साइंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सो टूडेज टॉपिक नहीं है, बट
1: कॉन्स्टिपेशन वो भी एक बॉबल
0: प्रॉब्लम।
1: चलिए हम यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारे एक दो लिसनर्स फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम जतिन है, मैं आंखों से दृष्टि बाधित हूँ।
2: जी, सवाल पूछे।
3: जी, सवाल ये है, हमारे पापा के 2 दिन से लेटरिन आ रही है मैम। ठीक, हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे, वो जैसे खिचड़ी भी खाते हैं, दवाई भी ले रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं, उसके पश्चात भी नहीं बंद हो रही है सर,
2: लूज मोशन हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं?
3: जी जी जी जी जी मैम, ऑफ कोर्सली।
4: कितने दिन से हो रहे हैं?
3: जी सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
3: जी, 2-3 दिन से हो रहे हैं सर।
4: 2-3 दिन से हो रहा है। स्टूल में ब्लड वगैरह भी आ रहा है क्या?
3: नहीं नहीं, हाँ हाँ सर, एक बार आया था लेकिन आँख बन गया था।
4: तो ये तो अगर 2-3 दिन से ही आ रहे हैं, क्या ये अभी 2-3 दिन से आए या बहुत मतलब पहले भी रिपीटेड आ रहे हैं कि हर 15-20 दिन में ऐसे 2-3 दिन बार आ रहे हैं?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, हर 2-3 दिन में सुबह शाम
4: आ रहे हैं। कितने 2-3 दिन से ही आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हर महीने 2-3 दिन आता है?
3: नहीं नहीं नहीं ओके, 2-3 दिन से आ रहे हैं। 2-3 दिन से,
4: ठीक है।
3: 2-3 दिन
4: तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है, इसमें आप पेशेंट को ORS दे दीजिए, लोकल किसी ORS का घोल दे दीजिए और स्टूल टेस्ट करा लीजिए, उससे से पता चल जाएगा कि किस तरह सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई और बीमारी है। ज्यादातर ये 2-3 दिन आप और ORS देंगे और उनको दलिया, खिचड़ी, पोहा, चिरवा, तरल पदार्थ दे देंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे।
2: थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हेलो।
5: हेलो
2: जी, कौन?
5: हाँ जी मैडम,
2: अपना सवाल पूछे।
5: मैडम, हमें ये पता करना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आए हुए हैं, कि हमें सुबह सुबह मैं एक टैबलेट लेता हूँ खाली पेट, काफी लंबे समय से ले रहा हूँ, उसके बारे में पूछना है क्या लेना उचित है?
4: हाँ, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कुणाल बोल रहा हूँ।
5: अच्छा ना, डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, ऐसा है, एक तो मेरे को प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद मेरा खाना ऊपर आता है
4: जी,
5: और दूसरी प्रॉब्लम है मेरे को डकारें बहुत आती हैं
4: जी,
5: तो मैं ये जब टैबलेट लेता हूँ तो मेरे को रिलीफ रहता है
4: जी।
5: सुबह खाली पेट लेता हूँ, उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना होता है
4: जी,
5: उससे रिलीफ जरूर रहती है मुझे
4: जी।
5: तो, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है, खाना भी ऊपर आता है और खैर डकारें भी बहुत आती हैं, लेकिन पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूं, यदि कुछ बता दीजिए।
4: ठीक है, तो ये आपको जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, ये आम भाषा में एसिडिटी और गैस एसिडिटी की बताते हैं। इसमें दो मेन, एक तो आप दवाई ले रहे हैं, दूसरा है ये जो पेंटोप्रिजोल की दवाई आप ले रहे हैं, तो ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाई है और जो डोज में आप ले रहे हैं, एक ही दवाई ले रहे हैं, ये आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट जिस टाइम लिमिट में कॉम्प्लिकेशंस आती है वो लंबी है, जब 4-5 साल ले लेंगे तो इसमें किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, अगर 10 साल तक लेंगे तो बोन्स वीक हो सकती है। आप मेन दवाई के साथ साथ डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखें, खट्टी चीजें का सेवन ना करें, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, दूध ना ले और ज्यादा फ्राइड चीजें और ऑयली और स्पाइसी चीजों का सेवन ना करें।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मैं एक ये मैसेज शामिल कर रही हूँ। इनका नाम अंगद यादव है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि मेरी उम्र 34 वर्ष है, मुझे गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर ने कहा था दूध नहीं खाने के लिए, मीठी चीजों को भी मना किया था, कहा कि मीठे से एलर्जी है। मैं 6 महीने बाद दूध पिया, मुझे चक्कर आने लगा, 5 मिनट बाद ठीक हो गया, ये क्यों हुआ क्या आप बता सकते हैं?
4: ये जो दूध नहीं पीना जो मना करना है, ये ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज शुगर होता है जो कि दूध में होता है, जब बच्चे होते हैं, ये माना गया है रिसर्च के द्वारा दैट आफ्टर 10 ईयर्स ऑलमोस्ट 73% ऑफ द एशियन पीपल मे बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो हमारे अंदर एक एंजाइम होती है रेनिन, जो छोटे बच्चों में तो होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो नहीं होती, इसलिए हम दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आज इनके

0: डॉक्टर्स ने
1: मना किया,
0: मना किया हुआ होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और भी कुछ मैसेजेस हैं उसे मैं शामिल कर लूं। ये संध्या गुप्ता जी का है, गजरौला उत्तर प्रदेश से, लिखती है सर, आर सार्कोडिस और अमाइलोडोसिस आर डिजीज ऑफ लीवर एंड इंटेस्टाइन।
0: यस दे मे बी बट दे आर मेनली डिजीज ऑफ द लंग।
1: ओके एंड ये पूछा है, इफ आई ईट एनीथिंग स्पाइसी देन आई हैव टू रश टू द रेस्ट रूम, इज इट अ सिम्टम ऑफ आईबीडी? नाम आपने अपना लिख के नहीं भेजा है।
0: यस दे मे बी अ सिम्टम ऑफ आईबीडी, यू नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ प्रॉपर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर।
1: मुझे हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट में मैलअब्सॉर्प्शन एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन फाइंडिंग हुई है एंड एंडोस्कोपी में इसोफेजुअल बल्जिंग फाइंडिंग हुई है। तीन चार सालों से भूख नहीं लगती है और बोवल मूवमेंट हार्ड होता है। बताने के लिए कृपा करें, मेरी उम्र 47 है, क्या आईबीडी से लिंक है? नरेंद्र सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से।
0: ये आईबीडी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं लगता, बिकॉज इन्होंने जो मैलअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम बताया है, एक बहुत छोटे तरीके में क्रोन्स डिजीज जो भी आईबीडी का होता है, स्मॉल बावल, ये हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा बाय टर्म्स ऑफ सीटी एंट्रोग्राफी और एंड मे बी स्पाइरल एंट्रोस्कोपी करके, बायोप्सी करके, कि इनको क्या डिजीज है।
1: ओके, इकोलाई होने से क्या ये बीमारी होने का खतरा है और इस बीमारी ये किस लिए होता है, आईबीडी क्यों होता है? ये तो बताया अभी आपने बहुत ही अच्छे से।
0: इम्यून डिजीज होती है आईबीडी एंड ईकोलाई से एक्सेसिबेशन हो सकती है, लेकिन मतलब बीमारी बिगड़ सकती है बट ये बीमारी कॉज नहीं करती, ईकोलाई डजंट कॉज आईबीडी।
1: ओके और ये पूछा है ककरोला द्वारका से शंकर लोध ने कि सर माय क्वेश्चन इज इफ आई हैव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देन आई हैव सीवियर हेडेक देन व्हाट एल्स इज टू बी डन बाय माय सेल्फ। सरदर्द बहुत होता है, दस वर्ष से।
0: इट इज वेरी कॉमन, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में लाइट हेडेडनेस, हेडेक या वो माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकता है। तो इट इज अ चिकन एंड एग सिचुएशन दैट हेडेक कॉजेज गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस कॉजेज हेडेक। तो यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट फॉर बोथ एंड सी कंट्रोल वन ऑफ देम एटलीस्ट एंड ऑल्सो डाइट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे डाइट में अगर गैस्ट्राइटिस है तो दूध ना लें, ज्यादा चाय कॉफी ना लें, खट्टी चीजें ना लें, खट्टे में नींबू, संतरा, मौसम्बी, अचार, आमला, इमली, इन सेवन ना करें। ज्यादा फ्राइड फूड्स, बटर, घी का सेवन ना करें। राजमा, छोले, फूलगोभी ना लें, ऑयली एंड स्पाइसी फूड ना लें। ये इनको कंट्रोल करें तो शायद आपके गैस्ट्राइटिस कंट्रोल हो जाए, तो हो सकता है कि हेडेक भी कंट्रोल हो जाए।
1: बहुत बढ़िया, एक लिस्नर से जुड़ते हैं मुंबई से। हेलो।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: सदाशिव पालकर, नई मुंबई सान पड़ा
1: जी। क्या सवाल है आपका?
2: सवाल है, लूज मोशन का तकलीफ है। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी, सदाशिव जी।
2: डॉक्टर साहब, मुझे लूज मोशन की तकलीफ ऐसी है कि लूज मोशन ये होता नहीं है, एक दिन छोड़ के होता है तो कड़क पत्थर के जैसे तो ऐसा होता है। अगर एक दिन मैंने त्रिफला नहीं लिया तो दूसरा होता ही नहीं, दूसरे दिन त्रिफला लिया तो हो जाता है, त्रिफला न लो तो दूसरा दिन टॉयलेट होता ही नहीं। क्या समस्या हो सकती है सर?
0: तो ये आपको जो समस्या है कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। इसमें आप त्रिफला ले रहे हैं, लेकिन आपको नेचुरल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले फूड एंड वाटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। वाटर आप करीब करीब 10 से 12 ग्लास लें और साथ में फाइबर खाने में ज्यादा लें। फाइबर होता है सलाद, फ्रूट्स, इन सब में होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप तीनों टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी सलाद का लें। इससे आपके बॉडी में फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, हो सकता है कि अपने आप से ठीक हो जाए।
2: साथ क्या कटोरी लेना है सर? सॉरी,
1: सैलेड। सैलेड क्या लेना है?
2: सैलेड, सैलेड, सैलेड एक कटोरी लेना है।
0: एक कटोरी तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, रात को, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी सलाद का ले। और आप एक छोटा सा डायबिटीज और थायराइड के लिए अपना ब्लड टेस्ट करा ले, क्योंकि ये दोनों सबसे कॉमन डिजीजेस होते हैं जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है।
2: नहीं मुझे सर, ये मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या नहीं मुझे।
1: बहुत बढ़िया, आप सैलेड खाइए एंड जैसा डॉक्टर ने बताया कि आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज और इसकी बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया आपसे पूछूं कि आईबीडी मुख्य रूप से किन बीमारियों की तरफ इशारा करता है, जैसे एक तो ये आपने बताया तो मुझे लगा।
0: जी एक्चुअली ये आईबीडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है डायबिटीज के साथ भी और थायराइड के साथ भी, क्योंकि ये तीनों

0: के तीनों ऑटोइम्यून डिजीज कहा के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे बॉडी में कुछ तत्व होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ज्यादातर इनका काम होता है कि बाहर से एक्सटर्नल जो बीमारियां या डिजीजेस आती है उनको रोकना, उनके साथ फाइट करना। पर कभी कभी कुछ कारणवश जो अभी भी पूरी तरह से शोध नहीं पता है, बट ये लिम्फोसाइट्स बॉडी की ही डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो आईबीडी में लार्ज इंटेस्टाइन या बाउल को डैमेज करती है तो उनका नाम इन्फ्लेमेटरी लेवल डिजीज हो जाता है। अगर वही लिम्फोसाइट्स हमारे थायराइड ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन थायराइड हार्मोन बनाता है उस ग्लैंड को इफेक्ट करती है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के संदर्भ में आ जाता है। और पैंक्रियास हमारी एक और ग्लैंड होती है जो कि स्टमक और इसके बीच में होता है इंटेस्टाइन के बीच में जो कि आम ज्यादातर ये शुगर कंट्रोल करने में रहती है। अगर उनको हम वो ऑटोइम्यून डिजीज इफेक्ट करती है तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट है,
1: ये सारे कॉम्प्लिकेशंस
0: एंड इन सब में जो इनको आईबीडी भी होती है उनको ये डायबिटीज भी ज्यादा हो सकती है, थायराइड की बीमारियां भी ज्यादा हो सकती है। और जिनको आईबीडी है इन बीमारियां होती हैं तो वो ज्यादा सीवियर भी हो सकती है आईबीडी पेशेंट्स में।
1: क्या पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जा सकता है इसे डॉक्टर साहब या नहीं?
0: एक्चुअली पाइल्स और आईबीडी का एक ही कॉमन चीज है वो है सिम्टम कि दोनों में ब्लड आता है, बट अदरवाइज बेसिक चीज में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाइल्स हम जो टेक्निकली समझते हैं वो हेमोरॉइड्स के वजह से होता है। हमारे एनस के आसपास कुछ ब्लड वेसल्स होती है, कॉन्स्टिपेशन में वो एंगॉर्ज हो जाती है और ब्लीड करती है, उसको हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स इज यूजली पेनलेस, उसमें लूज मोशंस नहीं होते, इनफैक्ट उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, स्टूल्स ज्यादा हार्ड आती है, उन्हीं को पाइल्स होता है। अदर देन द ब्लीडिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में पेट में दर्द होता है, पाइल्स इज पेनलेस। इसमें लूज मोशंस होती हैं, पाइल्स में स्टूल्स हार्ड होती हैं। तो एक्सेप्ट फॉर ब्लीडिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली रिवर्स।
1: ओके, हम और भी बहुत सारे सवाल डॉक्टर से करेंगे लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जिंदगी भले ही रुलाए लेकिन अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे ना तो उतना रोना नहीं पड़ेगा, कम से कम जिंदगी थोड़ी आसान जरूर रहेगी, है ना डॉक्टर साहब? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक मैसेज आया हुआ है एडवोकेट वारिस अली खान साहब का संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से, पूछते हैं कि क्या कोलाइटिस पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए, एक सवाल है। दूसरा है कोलाइटिस पेशेंट को क्या कब्ज भी होता है, और उन्होंने एक सिरप का नाम लिखा है कि वो ले सकते हैं क्या, जो ये नाम हम यहाँ नहीं ले सकते डॉक्टर साहब?
2: देखिए ऐसा है, कोलाइटिस पेशेंट को हम जो डाइटरी एडवाइस है वो सिंपल रखते हैं कि आपको दूध और सलाद नहीं लेना है। तो दूध इज अवॉइडेड, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक विच इंक्लूड्स मिठाई ऑल्सो, खोया ऑल्सो, एंड सलाद नहीं लेना है, वो मना करते हैं। सेकेंड आपका सवाल था कि क्या कोलाइटिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो कोलाइटिस में वर्चुअल होता है, इन द सेंस मैं क्यों वर्चुअल कह रहा हूँ, इसलिए वर्चुअल कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं कभी कभी कोलाइटिस में म्यूकस आता है, लेकिन कभी कभी अर्जेंसी होता है एंड देयर इज अ नो शो। एंड इसमें क्या है, क्योंकि कोलोन के पता लार्ज बाउल के सतह में इन्फ्लेमेशन होता है तो वो सिग्नल्स देते रहता है कि उसमें कुछ आएगा, लेकिन देयर इज नो स्टूल देयर टू एक्सपेल, इसीलिए पेशेंट को बार बार पॉटी में जाना पड़ता है एंड सिर्फ गैस के अलावा और थोड़ा म्यूकस के अलावा उसको निकलता नहीं है, तो इसको हम अर्जेंसी कहते हैं। एंड ये कॉन्स्टिपेशन जो टिपिकली हम समझते हैं कब्स, क्योंकि स्टूल हार्ड हो जाता है, एक्सपेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, पत्थर जैसे मार्बल पैलेट्स रहता है, वैसा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आईबीडी में। इट्स अ डिफरेंट कि आपको अर्जेंसी आती है स्टूल जाने की, एंड व्हेन यू गो देयर इज अ नो शो कि कोई स्टूल निकलता नहीं है।
1: एक ये मैसेज है, प्लीज टेल अस अबाउट एसजीओटी टेस्ट एंड वेदर देयर इज एनी कनेक्शन विद लॉस ऑफ एपेटाइट इफ दिस टेस्ट रिपोर्ट इज हाई। दिल्ली से yes. नाम नहीं भेजा।
2: एसजीओटी जो है ये एक लीवर एंजाइम है जिसको हम सीरम ग्लूट एएसटी कहते हैं, ये एक लीवर का एंजाइम होता है जो कि लीवर डैमेज, लीवर डिजीज में ये एलिवेटेड होता है। तो डेफिनेटली अगर किसी को लीवर डिजीज है, एक्यूट लीवर डिजीज है, उसमें एक ऑफ सिम्टम लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जॉन्डिस होता है, जनरल इनएबिलिटी, जनरल मलेस होता है, तो डेफिनेटली हो सकता है एंड इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड डॉक्टर के पास जाए, उनको बताए पूरे सिम्टम्स बताएं, कंप्लीट सिम्टम बताएंगे, तभी इनका पूरा डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाएगा।
1: डू स्ट्रेस एंड एंजाइटी आल्सो ट्रिगर आईबीडी?
2: यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टेल। आईबीडी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन एंड टेंशन, सो स्ट्रेस डेफिनेटली, एंजाइटी डेफिनेटली इसको प्रभावित करती है। एंड ये कहा भी जाता है कि ये टाइप ए पर्सनैलिटी जो कि ड्रिवन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। एंड ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई भी स्ट्रेस पॉइंट आपके लाइफ में आएगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम्स आ रहा हो, या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, या फैमिली में कोई अघटन हो गया हो, या ग्रीफ हो गया हो, तो भी ये जो बीमारी है ये बिगड़ जाती है, जो जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फ्लेयर अप, अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्लेयर अप हो जाता है, आईबीडी फ्लेयर हो जाता है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशंस फॉर दैट फ्लेयर अप आल्सो।
1: ओके डॉक्टर साहब, क्या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है आईबीडी जिनको होता है?
2: जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज्यादातर जो इसकी दवाई होती है वो स्टेरॉइड्स होती है, और कभी कभी हमें लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स देनी पड़ती है। क्रोन्स डिजीज जो एक स्मॉल बाउल काउंटर पार्ट होता है, उसमें एटलीस्ट 6 to 8 weeks तक स्टेरॉइड्स देनी पड़ती है। उनमें ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, बोन्स वीक हो जाती है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड वी शुड गेट आवरसेल्फ्स इन्वेस्टिगेटेड इन टर्म्स ऑफ विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए, और एक होता है बोन डेंसिटोमेट्री और बीएमडी, वो भी टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का और बोन बीएमडी अगर वीक है तो दोनों का सॉल्यूशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिंस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है अगर बोन्स सपोज वीक हो गई एंड कहीं पे आप गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली बिकॉज आईबीडी जो है एक्टिव, इकोनॉमिकली एक्टिव

0: ग्रुप में होता है, 25 to 45 ग्रुप में ज्यादा देखा गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस चीज को ख्याल रखें एंड टेक केयर करें.
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. एक और मैसेज है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, पूछते हैं कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट या जो व्यक्ति 3 या 4 बार चाय पीता है या कॉफी पीता है, क्या उसको भी आईबीडी जैसी समस्या हो सकती है?
0: डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यह है कि कॉफी या उससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, बट आईबीडी का होना कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा गया है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि कॉफी से आईबीडी हो जाएगा. सो इट्स नॉट पॉसिबल.
1: ओके, एंड ही 70-year-old पर्सन फ्रॉम रांची, उपेंद्र मिश्रा. वो जानना चाहते हैं कि मुझे करीब 15-20 दिनों से सुबह नाश्ते के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, लूज नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कृपया कारण और निदान बताएं.
0: देखिए, ये एक हमारे मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो 3 per week to 3 per day एक नॉर्मल रेंज है. जैसे हर चीज का एक नॉर्मल रेंज हुआ करता है. एक ये मिथ है सोसाइटी में कि अगर हम रोज फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है. तो ये नहीं है ऐसा. इट्स नॉट दैट रोज आपको फ्रेश होना है. हर इंसान की अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है. किसी को ऑल्टरनेट डे आती है, किसी को दिन में 2 बार आती है. सो दैट इज नॉट अ एबनॉर्मल थिंग एट ऑल. जैसे किसी भी बच्चे का एज ग्रुप या वेट ग्रुप होता है, एक रेंज होता है. तो इसमें भी एक रेंज है जो 3 per week to 3 per day. तो इस केस में प्रॉब्लम तब आती है जब इस रेंज से बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी है कि आप 3 या 4 बार से ज्यादा जा रहे हैं पर डे, या हफ्ते में एक ही दिन जा रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है. लेकिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी. कि कंसिस्टेंसी क्या है, एक सिंपल आकार में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम. अगर वो हार्ड आ रहा है, मार्बल्स की तरह आ रहा है, पत्थर की तरह आ रहा है, यस इट्स अ प्रॉब्लम. अगर वो पानी की तरह आ रहा है, दलदल की तरह आ रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम. तो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कंसिस्टेंस नॉर्मल है, सो ही शुड नॉट वरी एट हिज एज. ओनली कैवियट इज अगर वेट लॉस हो रहा है 70 साल के एज में, देन ही मस्ट गेट इन्वेस्टिगेटेड.
1: तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं अगर आपको लगता है कि आपका वेट भी कम हो रहा है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया. हम लेते हैं ब्रेक.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और हमारे एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कलकत्ता से, तो हम जल्दी से उनसे बातचीत कर लें। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछ लें।
1: मुस्तफा कमल
0: जी, क्या सवाल है आपका?
1: मेरे बवासीर हुआ है या क्या हुआ है, मेरे लेटरिन के रास्ते में परेशानी है, लेटरिन मेरा कोना होके आ रहा है।
0: पूछना क्या चाहते जी? ये सब सुन लिया क्या?
1: हाँ, यही समस्या है मेरा, इसीलिए पूछना था इस बीमारी से मैं कैसे रिलीफ पाऊंगा और क्या क्या मुझे खाना चाहिए।
0: सुन लीजिए, डॉक्टर बता रहे हैं।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: आपका जो ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है?
1: ब्लड नहीं आ रहा है सर, 3 साल से यही बीमारी है, मेरा ब्लड नहीं आ रहा है।
2: क्या आ रहा है?
1: मैं से अंदर कोई फूल गया होगा शायद, लेटरिन कोना होके आ रहा है।
2: लेटरिन क्या हो रहा है?
1: कोना होके आ रहा है, बिल्कुल
2: कोना होके आ रहा है। अच्छा
1: हाँ।
2: ये आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप बांग्ला में बोल लीजिए, मैं बंगाली समझता हूँ, बांग्ला बुझते भारी, आपने बांग्ला में बोलूँ की असुविधा होती है एक बार।
1: हाँ, আমার ওই যে লেটিন কে রাস্তাটা আছে না, যেরকম ওই ফোড়ার মতন হয়ে গেছে, আর ডাক্তার বলেছে যে ওষুধের জেরিয়ায় মনে হয় ভালো হয়ে যাবেন। এখন আমি ৬-৭ ডাক্তারকে দেখাচ্ছি, আমার হয়নি এখন।
2: আপনার কোলোনোস্কোপি হয়েছে?
1: হ্যাঁ, কোলোনোস্কোপি করেছি, যে ডাক্তারটা বলেছে, শিলিগুড়ির ডাক্তার বলেছে আপনার ফিশার হয়েছে।
2: ফিশার তো ইয়ে যে আপকো হুয়া হ্যাঁ, ইনকো টট্টি কে রাস্তে ফিশার হুয়া হ্যাঁ, ফিশার হোনে পে আপকো ইসকা আগর দবাই সে নহি ঠিক হো রাহা তো আপকো অপারেশন করনা পড়েগা।
1: এক বার অপারেশন কিয়া থা এক ডাক্তার নে, হুয়া নহি।
2: আচ্ছা, ফির আপকো মাই ইয়ে বাতা সকতা হু আপনে নলেজ সে, দ্যাট ওয়েস্ট বেঙ্গল মে সবসে বেস্ট হসপিটাল পিজি হসপিটাল হ্যায় কলকাতা মে, ওয়াহাঁ জাকে কিসি আচ্ছে সার্জন কো দিখাইয়ে অর আপকো সলিউশন মিল জায়েগা।
0: तो बिल्कुल आप ऐसी कोशिश करें, जाकर वहां पे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, उन्होंने बता दिया पीजी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या खाने पीने में कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बीमारी से आप दूर रहें, और ट्रीटमेंट, ये दोनों चीजें आपसे जानना जरूरी है।
2: जी, आपने बहुत ही दो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। ये खाना पीना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन आईबीडी, और हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि और बताया है कि दूध और सलाद थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड, प्योर मिल्क, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, जैसे आप पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, छाना ले सकते हैं। प्योर मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड। सेकेंड इज सैलड हैज़ टू बी अवॉइडेड, कि सलाद ना ले, उसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, रॉ फूड तो आपने कहा कि बहुत जरूरी है खाने में,
2: नहीं जिनको आईबीडी है उनको नहीं लेना। इन जनरल जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फॉर हेल्दी लाइफ इट इज रिक्वायर्ड, बट आईबीडी में नहीं करना, क्योंकि एक इनके आईबीडी का पार्ट होता है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि स्मॉल बाउल में, छोटी आंत में स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, रुकावट बन जाती है, तो सलाद अगर आप लेंगे तो उस एरिया में जाके फंस जाते हैं एंड दे लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। दैट इज वाई हम इनको मना करते हैं कि आप सलाद मत ले, फाइबर ज्यादा नहीं ले। दूसरा जो है, आप हेल्दी डाइट ले, यू कैन टेक गुड सीरियल्स, फूड्स, ये सब आप लेते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो आपने बताया ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ट्रीटमेंट हमें ज्यादातर दवाइयां चलती हैं, और बहुत ही 5-10% में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बहुत ही लिमिटेड केस में, वो मैं अभी 2 मिनट में आके बताऊंगा। नॉर्मली हम जो फ्लेयर अप जब होती हैं, तो हमें यूज करनी पड़ती है स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। और स्टेरॉइड्स आप जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोविड में बहुत लोगों ने स्टेरॉइड्स लिया, सबको पता है स्टेरॉइड्स के बारे में, बट हमें स्टेरॉइड्स लेनी है, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं, यूजली हम 2 वीक्स का स्टेरॉइड्स देते हैं और फिर स्टेप डाउन थेरेपी करते हैं, धीरे धीरे करके स्टेरॉइड्स को विद इन 6 वीक्स कम कर देते हैं। और ज्यादातर ये दवाइयां जो है होती है मिसलेमिन दवाई होती है, जो कि चलती है, एंड ये लंबे टाइम तक 1.2 ग्राम ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे करके हम यूज कर सकते हैं। इट्स ए वेरी वेरी स्टेबल मेडिसिन। बट कुछ और दवाइयां भी होती है जिनमें कि जैसे ये दवाई नहीं काम करे, तो सेकेंडरी कॉज में हम इम्यूनो सप्रेसेंस एजाथायोप्रिन यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन यूज कर सकते हैं, और कुछ एक नई जनरेशन की दवाइयां आ रही हैं जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल्स, जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज होती हैं
0: जी,
2: इसमें वो यूज कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, एंड इट इज डेफिनेटली कंट्रोलेबल वेरी वेल। एंड कुछ ओनली टू टू मिनट्स लूंगा और कुछ बहुत सीवियर केस में फल्मिनेंट कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्रोन्स कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतने अहम विषय पे इतनी सारी जानकारी देने के लिए। दोस्तों हमारे साथ थे डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन।
2: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई विल एंड बाय ओनली थिंग, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोहर स्टोर्क के अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टोडेटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योर फ्रॉस्टोडेटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक बिखराव के इस समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो

0: प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आयोजित भारत व्यापार सुधार सम्मेलन में कही। श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि व्यवसायों को उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्विक विकास को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे किवला झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चिंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देश। रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 5वें और लखनऊ 10वें नंबर पर है। प्लेऑफ के मद्देनजर ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान लगाया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी, और आकाशवाणी पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव। और दोस्तों समय हो गया 4:05, यानी ये प्रोग्राम है अल्फा जेन का, मतलब एक ऐसा शो जिसको डिजाइन किया गया है हमारे अधिकारियों द्वारा उन लोगों के लिए जिनका जन्म 2010 के बाद हुआ है। वैसे 2010 से पहले जन्मे जनरेशन जी वाले, जिनको 1997 से 2012 का माना जाता है, या बेबी बूमर्स 1946 से 1964 वाले, जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच जन्मे वाले, या मिलेनियन या जनरेशन वाई 1981 से 1986 वाले, ये सब भी हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर गौर से सुनिए, क्योंकि आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे एआई जनरेटेड जॉब्स की। और आप बने रहिएगा हमारे साथ पूरे इस घंटे, क्योंकि जानकारियां भी होंगी और मनोरंजन भी। तो जाइएगा मत, बस चिपके रहिए एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

दोस्तों गर्मी का कहर सभी को दिख रहा है और परेशान भी कर रहा है ना। वैसे मीका के इस गीत से थोड़ी ठंडक तो जरूर पहुंची होगी आपके दिल तक, है ना। वैसे अल्फा जेन वाले बच्चे हैं ना जो प्रैक्टिकली बहुत होते हैं, उनको चाहिए होता है तुरंत समाधान। अगर सावन अभी नहीं आया तो कैसे आ सकता है, अल्फा जेन जनरेशन इस पर सोचने लगती है। हम जेन एक्स वालों की तरह नहीं होते कि जो मैथमेटिक्स की तरह मान लिया या सपोज करके ही खुश हो गए। अब इस जनरेशन को चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वाला भविष्य, और उनकी इस तरह की सोच भी बिल्कुल सही है। जनरेशन अल्फा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का भविष्य बेहद उज्जवल है, और आने वाले वर्षों में AI केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई बड़ी बड़ी और ऊंचे लेवल की नौकरियां भी पैदा करेगा। और दोस्तों अगर आप भी जनरेशन अल्फा के लिए AI जॉब्स की तलाश में है तो किस तरह की जॉब आप पा सकते हैं, कैसे आप इनके लिए तैयारियां कर सकते हैं और कहां कहां आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं सब बताऊंगा। लेकिन AI का संदेश मेरे पास अभी आ गया है कि ऐसा रात के समोसे खाने का टाइम आ गया है, तो पहले मैं वो खा लेता हूं फिर आपको सब बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर और आप आनंद लीजिए इस मधुर गीत का आकाशवाणी FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन। अभी आपको हमने गीत सुनाया सिटी लाइट फिल्म का, जीने की मुस्कु, क्या है वो गीत था ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो। देखिए मेरा ध्यान है ना समोसे की तरफ इतना है कि बस उसे देख देख कर मैं मुस्कुरा रहा था। बहरहाल आप इस गीत को सुनकर न जाने कितने लिसनर्स हैं, पता नहीं किसको सोच सोच के बारे में वो मुस्कुरा रहे होंगे। वैसे AI ने सही समय पे है ना टाइम मुझे बताया और कहा समोसा खा लो, और मैंने समोसा खाया, बड़ा मजा आया। वैसे मेरी बात सुनकर आपके मुंह में पानी तो आ गया हो गया है ना। कोई बात नहीं, आप लोग बाद में समोसे का आनंद ले लीजिएगा, लेकिन अभी इन बातों पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप AI जनरेटेड जॉब्स पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप क्या बनकर AI जनरेटेड नौकरियां पा सकते हैं। पहला चांस है कि आप AI एंड मशीन लर्निंग विशेषज्ञ बन सकते हैं। जी हां, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप नई AI प्रणालियों और जटिल एल्गोरिथम को डिजाइन करना होता है। दूसरा होता है आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें AI टूल से सटीक और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए भाषा और निर्देश को सेट करना होता है। तीसरा, आप साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी बढ़िया आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, आप बन सकते हैं, क्योंकि इसमें AI आधारित हमलों से बचाव और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना सिखाया जाता है। चौथा, अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ केयर और बायोटेक की तरफ है तो आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं और आप चिकित्सा और रोबोटिक सर्जरी में AI का उपयोग करके बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है आपके पास सस्टेनेबिलिटी मैनेजर बनने का। जी हाँ, इसमें पर्यावरण सुधार और ऊर्जा प्रबंधन के लिए AI का उपयोग करके आप एक नई क्रांति ला सकते हैं। तो ये कुछ वो ऑप्शन थे जो आप चुन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हम इन नौकरियों को पाने के लिए कैसे तैयारियां करें, तो हम इसका भी जवाब आपको दे सकते हैं। लेकिन अभी एक इंस्ट्रक्शन हम तक पहुंचा है AI से नहीं बल्कि हमारे CVS डिपार्टमेंट से कि एड और प्रोमो प्ले करने का वक्त आ गया है। तो चलिए पहले कुछ कॉमर्शियल और प्रोमो प्ले करते हैं, फिर आपको वो भी बताएंगे कि आप AI जनरेटेड जॉब्स पाने के लिए कैसे तैयारियां करें। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो विद SR, SR बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन और मैं हूँ एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों, इस ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं जिनको चुनकर आप अपना करियर चुन सकते हैं जनरेटेड AI जॉब्स में, और इन बातों के लिए हमने आपको बहुत सी जानकारियां भी दी थी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इन नौकरियों को, मतलब इन कैसे आप पा सकते हैं, या हम यूं कहें कि इन नौकरियों की तैयारियां आपको कैसे करनी है। यदि आप जनरेटेड AI के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग और ट्रांसफार्मर्स का बुनियादी ज्ञान जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको टूल्स और तकनीक के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना है, या हम यूं कह सकते हैं इसका ज्ञान होना बेहद लाजमी है, जरूरी है। डॉकर और राग जैसे रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसको हम जरूर सीखें। आपको व्यवहारिक प्रोजेक्ट बनाने वाले एप्स होते हैं ना, उनको डेवलप करना सीखना होगा। थोड़ा कठिन काम है मगर मुश्किल नहीं है। आपकी थोड़ी सी चाहत और मेहनत आपको जरूर कामयाब बनाएगी इस फील्ड में। कोशिश करके देखिए, आपका भविष्य ऊंची उड़ान भरेगा। अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप इन नौकरियों के लिए किन किन प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो विद SR बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम अल्फा जैन। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों, अल्फा जैन में आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई से जुड़ी नौकरियों के बारे में। कंप्यूटर विज्ञान, डेटा साइंस या गणित में स्नातक होना बहुत

बहुत बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन है इसकी। अगर आप स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं तो कंप्यूटर साइंस से आपको करना है, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या अप्लाइड मैथमेटिक्स में बीटेक, बीसीए और बीएससी की जरूरत होती है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए तकनीकी रूप से मजबूत पदों के लिए एमटेक, एमसीए या एमएससी, एआई डेटा साइंस को प्राथमिकता दी जाती है। और प्रमुख विषय में विज्ञान यानी पीसीएम और गणित की मजबूत पृष्ठभूमि बहुत बहुत आवश्यक है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इस तरह की नौकरियों को ढूंढ सकते हैं। कहां पर ढूंढ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस प्यारे से गीत के बाद। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा था अल्फा जैन, और हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में एआई से जुड़ी नौकरियां और इंटर्नशिप के लिए आप naukri.com आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जॉब्स पर, या टेक्निकल करियर के लिए आप अमेजोन जॉब्स पर, एआई पर, या कई और टेक कंपनियों में जनरेटिव एआई से जुड़े करियर के विकल्प तलाश सकते हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, और हम आपको बता दें कि 5:05 से आपके साथ जुड़ जाएंगी सुषमा शर्मा लेकर सिटी लाइट्स, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए। इसी के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो से आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेता है आपका दोस्त एहसान यानी संतोष राव। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच

0: बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The third India-Nordic summit began in the Norwegian capital, Oslo, today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, are participating in the summit. The meeting is aimed at strengthening sectoral cooperation between India and the Nordic countries following the previous summit held in Copenhagen, Denmark in 2022. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: The Nordic countries generate over 90% of their electricity from fossil-free sources. India has its own ambitious green transition goals, so it would help in harnessing renewable energy sources like wind, hydropower, biomass, geothermal with the help of their expertise. The most concrete step taken towards the collaboration was yesterday when India-Norway relations were upgraded.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লভলীন নিগম। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The 3rd India-Nordic Summit was held in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, participated in the summit. With the Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA, now in force, the summit aimed to deepen trade and investment ties between India and the Nordic region. Key areas of focus included technology and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi held bilateral meetings with his counterparts from Iceland, Finland and Denmark. Prime Minister Modi reached Norway yesterday after completing his visits to UAE, the Netherlands and Sweden. From Oslo, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the 5th and final leg of his 5-nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
1: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his 5-nation tour, and the visit is expected to give a fresh push to India-Italy strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ডেইজি ডেকাৰ কণ্ঠত লোকগীত শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতেই সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচক পুনীত ত্রিপাঠী। আদৌ মুখ্য বার্তাঃ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওসলো নগরে তৃতীয় ভারত নর্ডিক শিখর সম্মেলনে ভাগম ভজিতবান, যস্যোদ্দেশ্যম প্রৌদ্যোগিকী পুনর্নবীকরণীয়ূর্জা রক্ষা ব্যাপার ক্ষেত্রেষু সহকারম সুদৃঢ়ীকরণমস্তি। প্রধানমন্ত্রিণা শ্রীমোদিনা সুইডেন দেশস্য সমকক্ষীয়েণ উলফ ক্রিস্টারসন ইত্যনেন সহ সংযুক্ত লেখে বৈশ্বিক অনিশ্চিততাবধৌ সহভাগিতায়াঃ বিষয়ে অবধানম প্রদত্তম। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়েন মানব জীবনস্য সার্বজনিক সুরক্ষায়াঃ চ আবশ্যকতাম উল্লিখন উন্মত্তানাম অসাধ্য রোগিণাম অথবা প্রত্যক্ষতয়া অপায়কারিণাম মার্গভ্রষ্ট শুনকানাম কৃতে প্রথমবারম ইউথেনেশিয়া মাধ্যমেন মৃত্যোঃ অনুমতি প্রদত্তা। অপি চ আইপিএল ক্রিকেট ক্রীড়ায়াম অদ্য সায়ংকালে জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালস দলম লখনৌ সুপার জায়ান্টস দলম সম্মুখী করিষ্যতি। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्येतेषां समकक्षिभिः सह अस्मिन् शिखर सम्मेलने भागं स्वीकृतम्। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे डेनमार्क देशस्य कोपेनहेगन नगरे आयोजितस्य पूर्व शिखर सम्मेलनानन्तरं भारत नॉर्डिक देशानां मध्ये क्षेत्रीय सहकारं सुदृढीकरणं अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यमस्ति। तन्त्रज्ञानं नवान्वेषणं च सुस्थिरता पुनर्नवीकरणीयोर्जा डिजिटलीकरणं च अस्य सम्मेलनस्य प्रमुखानि क्षेत्राणि सन्ति। व्यापार आर्थिक सहभागित्व सन्धिना TEPA इत्यनेन सह अधुना प्रवृत्तेन शिखर सम्मेलनस्य भारत नॉर्डिक क्षेत्राणां मध्ये व्यापार निवेश संबंधाः अपि सुदृढाः भविष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। नॉर्डिक समूहेन सह भारतस्य द्वैपाक्षिक व्यापारः सम्प्रति प्रायः 21 बिलियन डॉलर मितम् अस्ति। अनेन शिखर सम्मेलनेन भारत नॉर्डिक देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सहकारस्य विस्तारः भविष्यति तथा च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चायाः अवसरः प्राप्यते इत्यपि अपेक्षा अस्ति। शिखर सम्मेलनात् प्राक् पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी आइसलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा, फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा, डेनमार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणा च सह द्वैपाक्षिक मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन देशानां भ्रमणं समाप्य ह्यः नॉर्वे देशं सम्प्राप्तवान्। गतसायं सः क्राउन प्रिंस हकोन तथा नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोन इत्युभाभ्यां सह भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। वाणिज्य अनुसंधान समुदायं संबोधयन् प्रधानमंत्री श्रीमोदी व्यापार आर्थिक सहभागित्व संधेः प्रभावात् परं द्वैपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अधोरेखितवान् यत् उभयोः पक्षयोः हितधारकाः 100 बिलियन यूएस डॉलर इत्यस्य निवेशलक्ष्यं साधयितुं प्रयत्नान् कुर्युः। परिणामतः भारते 10 लक्षाणि यावत् वृत्त्यावसराणां सृजनं च करणीयम्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः पञ्चमान्तिमे चरणे च अद्य इटली देशं गमिष्यति। भारत स्वीडन देशौ वैश्विक अनिश्चिततायाः क्षणे सहकारः सहभागी समृद्धेः सुस्थिरस्य भविष्यस्य च मार्गं निर्धारणाय अवधानं दत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन च लिखिते लेखे वैश्विक अनिश्चिततायाः ऊर्जा असुरक्षायाः आर्थिक विभाजनस्य च समये विश्वम् एकाकीभूय कार्यं कर्तुम् अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वं सुदृढीकर्तुं वा चयनं कर्तव्यम् इति अवधानं दत्तवन्तौ। अद्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकायां प्रकाशिते लेखे उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उक्तवन्तौ यत् संयुक्त राष्ट्र संघः स्वस्य अशीतितमं वार्षिकोत्सवम् आचरति। अतः अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य बहुपक्षवादस्य च मूल्यम् इतोपि स्पष्टम् अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्चन्यायालयेन मानवजीवनस्य सार्वजनिकसुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम्, असाध्यरोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्टशुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमतिः प्रदत्ता। न्यायाधीशः विक्रमनाथः, न्यायाधीशः सन्दीपमेहता, न्यायाधीशः एनवी अंजारिया इत्येतेषां पीठेन सम्पूर्णे देशे वर्धमानानां स्वामी विरहितानां शुनकानां संख्यां निवारयितुं निर्देशाः प्रदत्ताः। न्यायपीठेन उक्तं यत् यत्र यत्र स्वामी विरहितानां शुनकानां संख्या चिन्ताजनकस्तरम् अवाप्नोत् तथा च यत्र पुनः पुनः शुनकानां दंशः वा आक्रमणानि जनसुरक्षायै विभीषिकां जनयन्ति तत्र नगरपालिकाः मृत्योः आश्रयं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। गतवर्षस्य जुलाई मासस्य 28 दिनांके आरब्धे प्रकरणे अयमादेशः प्रसारमाध्यमानां प्रतिवेदनेषु विशेषतः राष्ट्रिय राजधान्यां बालानां मध्ये स्वामिविरहितानां शुनकानां दंशनस्य रेविज इति रोगस्य च घटनाः प्रकाशमानाः आसन्। एतदतिरिच्य सर्वोच्च न्यायालयेन स्वामिविरहितानां शुनकानां स्थानान्तरणस्य प्रजननावरोधस्य च विषये पूर्वतनस्य आदेशस्य पुनरावेदनस्य याचिका निरस्तीकृता। सः अवदत् यत् गौरवपूर्वकं जीवनस्य अधिकारे शुनकानां दंशनस्य आक्रमणात् हानिकारकं भयं विना स्वातन्त्र्यतया भ्रमणस्य अधिकारः अन्तर्भवति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य उद्यम सर्वकारयोः मध्ये व्यापारे सुगमतां वर्धयितुं भारते प्रतिस्पर्धात्मकं वर्धयितुं विकसित भारतं प्रति देशस्य यात्रां च त्वरितं कर्तुं प्रगाढ़ सहयोगस्य आह्वानम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां 26,000 भारत व्यापार परिष्कार शिखर सम्मेलने मंत्री भाषमाणः आसीत्। श्री गोयलः अवदत् यत् वर्तमान वैश्विक परिस्थितिः, भूराजनैतिक अनिश्चितताः च भारतस्य कृते व्यापार प्रतिक्रियां सुदृढं कर्तुं द्रुततर परिष्कारान् स्वीकर्तुं महत्तर स्थितिस्थापकायाः निर्माणं कर्तुं आपूर्तिश्रृंखलाः सुदृढां कर्तुं च अवसरत्वेन द्रष्टव्यम्। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिंग वर्येण सह मेलनं करिष्यति। क्रेमलिन इत्यस्यानुसारं उभौ नेतारौ आर्थिक सहयोगस्य विषये प्रमुखेषु प्रादेशिक वैश्विक विषयेषु च चर्चां करिष्यतः। एषा यात्रा चीन रूस मैत्रीसन्धेः 25 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये आचर्यते। एषा वार्ता तदा अभवत् यदा वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षस्य मध्ये चीनदेशः अमेरिकादेशेन रूसदेशेन च सह स्वस्य सम्बन्धान् सन्तोलयति। यूक्रेन द्वन्द्वस्य विषये पाश्चात्य प्रतिबन्धानाम् अनन्तरम् अपि चीनदेशः रूसदेशस्य बृहत्तमः वाणिज्यिक सहभागी रूसदेशस्य तैल प्राकृतिकेन्धनस्य प्रमुखः क्रेता चास्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायां प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धा याम संति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्, यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायामद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
0: বাতৰিৰ পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। প্ৰশ্ৰোতা, আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলো হাৰ্টছ আৰু ডি এন এফ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলো হাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাক যোগাযোগ। প্ৰশ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো ৰিকি তলদৰৰ কণ্ঠত আধুনিক গীত।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said India and Nordic countries have decided to give their relations the form of Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the remarks while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark also took part in the media briefing. Prime Minister Modi said, with this green technology partnership, they will connect Iceland's expertise in geothermal and fisheries, Norway's expertise in blue economy and Arctic, and all Nordic countries' expertise in maritime and sustainability to India's skills to ensure a better future for the entire world.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said to provide energy and speed to India's relations with Nordic countries, they formed this format 8 years ago.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: फ्रॉम ओस्लो, प्राइम मिनिस्टर मोदी।

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে লভলি নিগম। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का

0: रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री

0: गोयल ने ये बात कही।
1: दैट वी विल कन्वर्ट द करंट सिचुएशन।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।